0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो।
1: क्या? सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: Orchid Scraps, MSN Chats and Bollywood Bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The part of the big weekender. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी, देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

0: बोलो।
1: ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ।

0: खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।
1: Less hustle, more yaadein. That's how weekends should be. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: मिलेनियल

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender, where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: एंड वेलकम टू द बिग मिलेनियल वीकेंडर. मैं हूं शिरिन, आपके साथ एक बार फिर आपके शनिवार को बनाने के लिए और ज्यादा शानदार. तो हर वक्त, मतलब हर सैटरडे को मेरे साथ होते हैं उज्जवल. आज मेरे साथ हैं हमारी फैशनिस्ता जोहरा. हाय जोहरा.
2: हाय शिरिन, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. सो जोहरा जो है मुझे आज सपोर्ट करने वाली हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो मैंने जो है वो कॉन्टेस्ट जीता था डाबा हॉर्नेट्स का. क्या आपका गला तैयार है? और अभी मेरा गला तो तैयार है, लेकिन फिर भी मैं अभी जो है टेक्निकल पार्ट सीख ही रही हूं.
2: यू नो दैट दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी, राइट?
1: आह, इज इट?
2: दिस इज, आई वाज सीजन 1 विनर.
1: ओह रियली?
2: या.
1: ओह माय गॉड,
2: दैट इज हाउ. तो मुझे अभी वो मेमोरीज आ रहे हैं.
1: ओह, दैट्स सो नाइस. ओह वाओ, अगर मुझे पता होता कि ये है तो आज का टॉपिक हम वही बना देते.
2: अगला तैयार है लग रहा है मुझे. अब थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया मुझ में, तो बोल सकती
1: हूं. ओह दैट्स सो नाइस. वाओ, बट आई रियली डिड नॉट नो. अच्छा, ऐसे स्टार्ट किया था एंड देन यू,
2: इट हैपेंड वेरी वेरी, इट वाज ऑल ऑफ अ सडन. आई was not at all into radio. I was doing TV, in fact.
1: I know. That I know. Yes.
2: And then one fine day, people were like, "Arey, TV kar sakte ho, to radio kyun nahi?" And it was just the "kyun nahi" that pushed me. That "kyun nahi" makes sense. Like, you know, I why know, not? I know.
1: Yeah, that's true.
2: People should not ask why you do radio.
1: Exactly.
2: Why
1: exactly,
2: not?
1: Exactly. Radio. Why not? Yeah. Actually, मैंने भी जब TV किया था ना, I was doing South Indian, you know, TV channel. तो उसपे मैं कर रही थी show. तो मुझे भी लगता था कि radio करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करके manifest कर ही लिया मैंने finally.
2: Very good.
1: तो अब मुझे जो आज मैंने सोचा था कि ना, since you're so much into fashion and much before even we met, मैं हमेशा ज़ोहरा को follow करती थी.
2: Before that,
1: yeah,
2: right?
1: yeah, yeah, exactly. तो मैं follow करती थी, मैं बोलती थी ये पता नहीं कहाँ से कैसे उठा के कैसे जोड़ दौड़ के वो कर लेती. आज भी जो पहन के आई है ना, it is like I can't even imagine.
2: You are the only nice woman over here, because whenever I get experimental with fashion, only women are nice to you. You know,
1: that
2: women will say good things like, oh wow, you look good. आदमी,
1: that's because
2: ये क्या Japanese school girl.
1: No, that's because women understand fashion. That true. Is why. Men ka kya hai yaar?
2: Let me style you one day.
1: Sure, why not?
2: Let's do this.
1: Why not? All right. तो आज की जो बातें हैं हम लोग पूरे फैशन के बेस्ड, फैशन के ऊपर बेस करके करेंगे, बट ऑफकोर्स बॉलीवुड को भी उसमें हम लोग बीच में घुसाएंगे. हाँ, तो वो हम करेंगे. बट आई थिंक अभी मुझे लगता है हम लोगों की बातें ज्यादा हो गई हैं. हम गाना सुनने के लिए वी मस्ट मूव ऑन. सो ऑन 106.2 वी आर गोइंग टू लिसन टू द सॉन्ग.
2: सोनू निगम की आवाज अलॉन्ग विद अलका याग्निक, ऐसा दीवाना. आई एब्सोल्युटली लव दिस डुओ, सोनू निगम एंड अलका याग्निक.
1: आई नो,
2: इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन
1: डेफिनेटली
2: इन द इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री
1: डेफिनेटली.
2: आई थिंक शिरिन जो है वो नेक्स्ट अपना नाम बनाने वाली है. मैंने सुना है कि वो अच्छी सिंगर है. थोड़ा सा इनसे गवाएंगे हम नेक्स्ट.
1: ऑफ कोर्स,
2: यू आर लिसनिंग टू द बिग मिलेनियल वीकेंडर. दिस इज शिरिन विद यू. माय नेम इज ज़ोहरा. वी कीप यू कंपनी अंटिल 12 o'clock.

0: feel to this song. Oh my god, it's still so fresh. Wow. ये गाना जो है ना रिसेंटली आई थिंक ऑन वन ऑफ द शोज आई हर्ड श्रेया घोषाल सिंगिंग द सेम शो सेम सॉन्ग
1: और क्या
0: हाँ एंड शी सैंग इट सो नाइसली लाइक अभिजीत जो है ही हैड कम एज अ यू नो गेस्ट यू नो एंड शी वाज ही वाज एक्चुअली सिंगिंग द सॉन्ग एंड देन ही टोल्ड हर टू जॉइन इन एंड शी सैंग एंड इज लाइक वाओ ये इनकी आवाज में भी इतना अच्छा लगता है यार सुनने के लिए
1: शी कैन ब्लेंड इनटू एनीथिंग
0: आई नो शी इज डेफिनेटली द क्वीन जस्ट लाइक यू आर द क्वीन ऑफ फैशन तो चलो अब शुरू करते हैं तो मिलेनियल टाइम्स की बात हो रही है मिलेनियल टाइम्स में फैशन थोड़ा डिफरेंट होता था कुछ लोगों का अतरंगी होता था लेकिन मुझे लगता है मेरे हिसाब से अभी मैं थोड़ी एमेच्योर हूं अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना जरा
1: फैशन में देयर इज नो गलती इट्स सब्जेक्टिव आपके हिसाब से जो सही है अगर लोगों के हिसाब से गलत है इट्स स्टिल नॉट रॉन्ग यू आर राइट
0: या आई नो तो मुझे लगता है ना कि हम लोग ऑफकोर्स बहुत सारे जो नोन सेलिब्रिटीज हैं कि जिनके बारे में बार बार बातें होती है वो तो होती है बट मुझे लगता है उर्मिला मातोंडकर वाज डेफिनेटली अ फैंटास्टिक फैशन था फैशन सेंस था उर्मिला का
1: हूएवर वाज स्टाइलिंग उर्मिला मातोंडकर बैक इन द डेज डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज शी बिकेम एन आइकॉन फैशन आइकॉन
0: सीरियसली
1: आई रिमेम्बर आई थिंक आई स्टार्टेड वेयरिंग दोज नी हाई बूट्स only
0: True.
1: because of her
0: yes.
1: mini skirt pehno uh-huh. knee high boots pehno uh-huh. you know the cap or whatever
0: yeah.
1: and that look
0: and you know wahi look agar koi aur pehnta hai now I don't know I don't get that thing you know ye jab wo the way she carries it you know and not just that rangila mein uska har ek outfit dil lagi movie
1: Ooh.
0: which was movie was itna nahi chala actually mujhe bahut achhi lagti hai movie but itni nahi chali but uske jo dresses hain usme uske jo costumes hain oof that's like amazing
1: even
0: you know?
1: I feel Karishma Kapoor
0: yeah
1: Karishma Kapoor ke bahut sare looks iconic
0: yes. and they both are very similar looking the way they are dressed up
1: hai body type also
0: very
1: even
0: petite.
1: especially dil to pagal hai agar aap dekh lo
0: yeah.
1: usme bhi karishma kapoor ke outfits
0: Correct.
1: were so much better than madhuri
0: yeah definitely mujhe lag raha tha jo dress wise hai na madhuri ka even if it's like indian styled still mujhe lag raha tha ki karishma was shining out standing out hai na
1: yeah,
0: so yeah so chalo jo mera pehla mujhe laga tha ki main bolungi urmila matondkar zohra ne mujhe ha bol diya hai so that means mujhe bhi thodi fashion ki samajh hai
1: Absolutely है and I think as millennials we're able to spot that right
0: yeah, correct.
1: because हमारे time के जो गाने थे and all that जो music correct. videos थे I don't think Gen Z has ever seen that or
0: Definitely.
1: they know that but they don't even realize that उनका जो अभी का fashion है is literally that
0: yes
1: early
0: yes.
1: 2000s में जो हम कर रहे थे ये बच्चे अभी करके कह रहे हमने किया है
0: yeah
1: I'm sorry but हम तुम्हारी माँ है
0: but I'll tell you something तुम्हें क्या लगता है अगर वही सारी चीजें जैसे for example करिश्मा कपूर का दुल्हन हम ले जाएंगे वाला You know, look.
1: Right.
0: उन लुक्स को अगर अभी लेके आए तो डू यू थिंक इट विल रन
1: 100% फैशन इज समथिंग टाइम टाइम से वो आता जाता रहता है
0: रिपीट हो जाता है
1: जो आप 2000s अर्ली 2000s में कर रहे थे वही अगर 2010 में किया होता तो नहीं चलता पीपल बी लाइक अरे दिस इज सो डेटेड बट 20 इयर्स लेटर इट इज कमिंग बैक द बिग चश्मा द बिग चंकी अगली बेल्ट्स जो हमने इस कॉलेज के टाइम पे पहने थे दे आर ऑल कमिंग
0: शाइनी ग्लिटरी या
1: I know, so I true. think fashion is something that will always keep coming back and you can never say ki no this look won't work because yeah. you know 100% it will
0: definitely so on that note I think it's time for us to move on to the next song on Big Millennial Weekender this is me Shirin and with me is Zohra on Big 106.2
1: This is the beat of
0: Bollywood.
2: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender. Where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: This is the Big Millennial Weekender. मैं हूँ शिरिन आपके साथ और मेरे साथ हैं जोहरा एंड हम लोग बात कर रहे हैं फैशन के बारे में. And let us continue. तो मुझे लगता है one more person. Okay, हम लोगों ने females की बात कर ली है, थोड़े males को भी जो है importance दे देते हैं.
2: Gender equality.
1: Yes, exactly. Feminism. Yeah. तो जो है गोविंदा. What do you think about Govinda's fashion back in the day?
2: I think Govinda back in the day was what Ranveer Singh is now.
1: Do you really think? मुझे लगता है Ranveer Singh is a little more than Govinda. Don't
2: you think? Of course. Yeah. जब नए generations आते हैं, anything that we have done, they have amplified.
1: Yeah, exactly.
2: तो Govinda को inspiration लेके उसको amplify करके Ranveer Singh निकले. अब और भी आएंगे जो Ranveer Singh को amplify करके into three बनेंगे.
1: That's true. But I think Ranveer at least you know जब उसके roles होते हैं, उसके हिसाब से वो ढल भी जाता है. लेकिन Govinda उन roles में भी अपने आप का वो जो है फ्लैम्बॉयंट और वो कलरफुल वो जो चीजें हैं वो लेके आते थे, मुझे ऐसा लगता है. राइट, ऑल ऑफ हिज रोल्स वर आल्सो सिमिलर टू यू नो द काइंड, इवन इफ ही इज अ पुलिस इंस्पेक्टर फॉर एग्जांपल, यू नो उसमें भी वो थोड़े ऐसे अटपटे, यू नो थोड़े चमकीले और थोड़े कलरफुल और टटाक पटाक है ना.
2: That was his personality.
1: Yeah.
2: So I think he always made sure to bring his personality in whatever he did.
1: Yeah.
2: I think that at that time worked for him.
1: हाँ, it worked for him.
2: वो बन के रह गया था. कोई बाहर भी अगर वैसे कपड़े पहन गया, अरे गोविंदा बन गया.
1: गोविंदा बन गया. Yeah. Red pant पहन लिया, गोविंदा के pant पहन गया.
2: आजकल गोविंदा नहीं कहते. आजकल क्या कहते हैं?
1: रणवीर सिंह.
2: Correct.
1: I know.
2: So he has actually taken that inspiration and become that himself now.
1: True. And also गोविंदा की बात ये है कि उसके जो आसपास जो भी हीरोइन है, जो भी एक्ट्रेस है, जो भी बाकी के एक्टर्स हैं, सब उसकी जैसे ड्रेस करने लग जाते हैं. सोच के देखो, when करिश्मा कपूर इतने सारे मूवीज करती थी उसके साथ, वो भी थोड़े से वैसे कपड़े, but then it suited her. Then they used to be नीलम, करिश्मा से भी पहले नीलम हुआ करती थी. She also used to wear all colorful. फिर रवीना टंडन हो गई, वो भी थोड़े अटपटे कपड़े होने, but then you know whoever acts with him, वो थोड़े वैसे ही हो जाते थे.
2: Maybe that was what the filmmakers wanted so that Govinda just didn't look odd.
1: Yeah, it would match
2: because his personality was so colorful. If the actress didn't match up to that, वो odd pairing हो जाती. Maybe that's what was intentional, I think.
1: Could be. But मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस लगी है जिन्होंने ऐसा मैचिंग नहीं किया है, वो है ऐश्वर्या राय इन अलबेला, द ओनली वन फिल्म दैट शी डिड. शी हैज नेवर रियली वोन एनी थड़ाक भड़ाक कलर्स इन दैट मूवी इफ यू चेक.
2: I think वो depend भी करता है ना, what kind of movie you're doing, what kind of characters you're pulling. उस movie में शायद नहीं fit कर रहा था,
1: her doing colorful things. True. Yeah.
2: So maybe
1: But definitely Govinda was also an icon back in the day.
2: Fashion icon for sure. He set the tone for so many people. Like when people wanted to get experimental with their clothes, they would say, अरे Govinda कर सकता है तो हम क्यों नहीं.
1: Yeah, true.
2: So he actually set that standard कि जो करना है करो भाई.
1: Yeah.
2: It's your life. You want to wear pink and purple together, green and orange together, पहनो.
1: Back in the day ऐसा था भी नहीं कि ब्लू जेंट्स का था और पिंक लेडीज का था, ऐसा कुछ था नहीं.
2: कोई भी कुछ भी
1: था. Yeah, I know.
2: There were no gender specific colors. तो हमारे ये चंचले हो गए थे बड़े होते होते.
1: बाद में आके, yeah, right. All right, so I think मेरा थर्ड वाला जो मैंने तीर छोड़ा है वो भी बिल्कुल निशाने पे लगा है. ज़ोहरा ने एक्सेप्ट कर लिया है मेरे लिए, जो है मेरे को एक टिक मार्क दे दिया है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी.
2: आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई विल कंप्लीटली बी अगेंस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस, बिकॉज़ फैशन इज समथिंग आई टोल्ड यू इज वेरी सब्जेक्टिव. लोगों पे डिपेंड करता है एंड सेलिब्रिटीज ने अब जो किया है वो किया. यू कैन नॉट से कि वो गलत था या सही था. देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन फैशन. इट इज व्हाटएवर लुक्स गुड टू द आईज.
1: दैट्स ट्रू.
2: है ना, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई. यू आर वेल ड्रेस्ड टुडे.
1: Thank you so much.
2: You're actually well dressed. I like the skirt. It's nicely paired with the blazer. Semi casual look hai.
1: Yeah.
2: Main pura describe kar rahi hu. Are you being able to picture what outfit she's wearing?
1: Thank you so much, Zara. All right. So, yahan par jo hai millennial weekender pe hum baat kar rahe hain millennial fashion ki, kyunki hamare saath hai Zara jo ki khud ek fashionista hai. Keep listening to beautiful songs, beautiful millennial songs, aur fir se hum aayenge aur fashion ki baatein lekar. Until then, keep listening to Big Millennial Weekender on Big 106.2.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: अलीशा चिनाई की आवाज में हमने सुना ये ब्यूटीफुल सा गाना. आई एम श्योर यू ऑल लव्ड इट. अलीशा चिनाई हरसेल्फ वाज सच अ फैशन आइकॉन, राइट?
1: Absolutely. I feel like comeback अगर होना चाहिए किसी का तो Alisha Chennai का होना
0: चाहिए. Yeah, I know.
1: I saw this post of hers on Instagram where she's saying I'm back to India. I'm heading back to India.
0: Oh really?
1: She looks very different. Obviously, age हो चुकी है अब तो. You know, वो जो charm था उनके face पे वो नहीं है. But that essence is still there.
0: Yeah.
1: That cute essence is still there. And I don't think Alisha Chennai की आवाज में जो वो एक husky, एक touch था. वो किसी की भी आवाज में
0: किसी की आवाज में नहीं लगती. और वही नहीं, वो हर एक एक्ट्रेस को सूट करता है ना उसकी आवाज में, है ना.
1: Really, what do you think Alisha Chennai suited the most? Which actress?
0: I think Priyanka Chopra.
1: Oh,
0: Tinka. Oh, that is like, है ना. Don't you think so?
1: 100% agree with you on this because Priyanka Chopra is also such कि उनकी भी आवाज वैसी है.
0: She's also थोड़ी husky voice. She talks like that, you know.
1: And this nice, you know, क्या कहते हैं, this very. I'm running short of words.
0: Very. मतलब वो उनकी आवाज से ही लगता है, you know, राम चाहे लीला चाहे. आवाज से ही लगता है.
1: टोन के साथ हमारी एक्सेंट भी आ गई है. बढ़िया. 100% स्पॉट ऑन विद दैट. अलीशा चिनॉय फिट्स प्रियंका चोपड़ा द मोस्ट.
0: या एंड आई थिंक ऐश्वर्या राय आल्सो कजरारे में. In that song, Kajrare, I feel
1: agreed somewhat.
0: Yes. You can actually figure her voice and her face and that entire get up and everything. Mm. The entire song, that is such a, I mean, dono Miss World thi.
1: Dono ki dono Miss World.
0: Absolutely. All right. So fashion ki baat ho rahi hai yahan par. To mujhe lagta hai ki fashion ki baat ho rahi hai. Jo hamesha naam liye jaate hain, wo naam nahi le sakte. Lekin ye ek naam hai jo lena hi padega. Wo hai Madhuri Dixit. माधुरी दीक्षित. मुझे लगता है कि मोस्टली मोर देन द वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक्स, आई ऑलवेज थॉट दैट द इंडियन ट्रेडिशनल लुक्स सूटेड हर द मोस्ट.
1: या बट आई सो सी दिस इज वन थिंग आई माइट नॉट 100% अग्री विद यू. यस, शी इज वेरी वेरी गुड. बट इफ आई हैव टू से इफ शी स्टूड आउट, आई डोंट नो.
0: स्टूड आउट मतलब यही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब पहले से तो नहीं फैशन कुछ भी मेरे को लगता था. शी डजंट इवन केयर, शी जस्ट डू हर डांस एंड डू हर एक्टिंग. उसी में लोग कपड़ों को तो देखते ही नहीं.
1: एग्जैक्टली
0: ऐसा था उसका.
1: बिकॉज़ हर एक्सप्रेशंस वर सो स्पॉट ऑन.
0: एग्जैक्टली,
1: कपड़ों पे उतनी नजर
0: नहीं पड़ती थी. बट मुझे लगता है पहली बार कभी जो जिसने अगर किसी ने अगर उसके कपड़ों के ऊपर बात की है, दैट इज हम आपके हैं कौन का, वो पर्पल कलर का ब्लाउज.
1: But that I think you have to give it up to the stylist of the movie.
0: Yes.
1: Also, of course, how she pulled it off. You know, वो आपके ऊपर भी होता है, how you're able to carry. Some people are not able to carry.
0: Yeah.
1: माधुरी did that with grace and elegance every single movie she did.
0: Exactly.
1: But अगर आप देसी वेयर में किसी बॉलीवुड आइकॉन की बात कर रहे हो, I think मैं नंबर वन पे रेखा को डालूंगी.
0: Oh my god, that is absolutely right.
1: Because even till date, even though she's done True. Some massive photo shoots with like western outfits and stuff, and she looks like an absolute goddess.
0: Yes.
1: But in her Indian avatar, I don't think anything matches her aura.
0: That's true. I think Rekha, yes, Rekha definitely. हाँ. तो मुझे लगता है yes. यहाँ पे जोरा ने मुझे एक क्रॉस मार्क दे ही दिया है भले.
1: नहीं.
0: But I agree with her.
1: जो तीर मेरी तरफ उड़ता था, मैंने ऐसे रिवर्स में तीर वापस दे दिया उनके पास.
0: नहीं नहीं. But I completely agree with you, जोरा. And मुझे लगता है रेखा का नाम लिया है तो रेखा का ही गाना भी सुन लेते हैं. रेखा का गाना मतलब गाना जो रहा है वो सुनिधि चौहान की आवाज में है. कैसी पहेली. ओह, नादर.
1: Do you think Alisha Chennai's voice would suit Rekha also?
0: Yes. It may actually.
1: We should be doing that next.
0: Yes.
1: Agar comeback hua Alisha Chennai ka, it should be for a song that has Rekha ji.
0: Oh my god. Ye sare jo hai na, aajkal ki generation wale sunte hi reh jayenge bas. All right. So let's listen to the next song, which is Sunidhi Chauhan ki awaaz mein on Big Millennial Weekender. This is me, Shirin, and Zohra is with me. Keep listening to us. Big 106.2.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: Scraps, MSN chats and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: नहीं है मुझे, मतलब दैट फ्रेशनेस इज स्टिल देयर इन शान्स वॉइस, डोंट यू थिंक?
1: Absolutely think. Also this movie.
0: Yeah.
1: Raju Chacha. What a movie.
0: I know.
1: I cried so much. I was a child back then. Yeah, movie release hui thi. गाने तो अच्छे थे ही, but apart from that, the whole concept of it, of how the chacha takes care of the kids.
0: Yeah.
1: It's just so
0: it was very nice. It was really very heart touching. बहुत ही relatable, बहुत ही अच्छी movie थी. Very nice, very feel good kind of a movie.
1: They don't make these movies these days.
0: I know they don't. They
1: really don't. क्या ही जाने राजू चाचा का क्या ऑरा था back in the days.
0: I know राजू चाचा का ऑरा जरूर था, acting भी अच्छी थी, लेकिन राजू चाचा का fashion sense I really don't think so.
1: राजू चाचा fashion से भी राजू चाचा ही थे.
0: वो राजू चाचा हो या राजू काका, काका भी बोल सकते हैं. बट इसीलिए अनदर फैशन आइकन की तरफ बढ़ते हैं. मुझे लगता है गुड लुक्स एंड गुड लुक्स. नहीं, मैं करीना कपूर की बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है करीना कपूर का नाम तो आएगा ही. मैं बात कर रही हूँ ऋतिक रोशन की. Right?
1: No. I do not agree. Ritik Roshan does not need clothes to look good. Yeah,
0: exactly. Does not need clothes. ये थोड़ा सा.
1: Don't need it. Take it and go.
0: No, I absolutely agree. क्योंकि पता है जोहरा को पता है, मुझे पता है, जब कहो ना प्यार है आई थी, हमें ऐसा लगा था क्या हो क्या गई, ये कौन है ये बंदा, ये ना इसको पहले कहीं देखा नहीं. मेरे को लग रहा है कि उसको छुपा छुपा के रखा था, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीबडी सॉ हिम. बाद में लोगों ने देखा, अच्छा ये था ऋतिक जो कोयला में भी एडी बना था, ये वो बाद में बात कर रहे थे, बट तब तक छुपा के रखा था. और जो आया वो, जो बैंग के साथ आया,
1: आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट डेब्यूज, आई थिंक ही लेफ्ट अ मार्क. एब्सोल्युटली पीपल वर कंप्लीटली ड्रूलिंग ओवर हिम.
0: यस,
1: कि ये कौन है ये लड़का, इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा डांस,
0: आई नो
1: एक्टिंग, ऑल्दो नो
0: नहीं, वाई एक्टिंग भी अच्छी थी यार.
1: नए नए में ही वाज वे टू ओवर द टॉप. नए में इन हिज इनिशियल फ्यू मूवीज
0: ओवर द टॉप. ऋतिक की अगर बात करनी, वो तो मैं प्रेम की दी हूँ. उसमें अभिषेक बच्चन को छोड़ के बाकी सारे ओवर द टॉप थे. अभिषेक बच्चन को मुझे लग रहा है सोने की कोई दवाई दे दी गई थी.
1: अभिषेक बच्चन को उस मूवी में अवार्ड देना चाहिए.
0: सो कहो ना प्यारे से, लेकिन अब तक आई थिंक ऋतिक रोशन का फैशन जो है, इट इज ऑलवेज बीन ऑन द पॉइंट. एंड द थिंग इज, उसको अगर कुछ कपड़े दे भी दिया ना, इवन बनियान पहना दी, वो अच्छा दिखता है.
1: आई थिंक मोर देन ऋतिक, आई वुड टेक अर्जुन रामपाल's नेम.
0: अर्जुन रामपाल, या फॉर श्योर, यस, या
1: Fashion, I think he was someone that people would really, really find attractive, especially because of what he wore and how he was able to carry it.
0: That's because he was a model.
1: Because Ritik Roshan, as you know, Madhuri ka, bola, expression or dance ke alawa, log dekh hi nahi paate the because that was so good.
0: Correct.
1: Same with Ritik, he became the dancing legend when it came to men in Bollywood.
0: Yeah. Whereas Arjun Rampal was not good in dancing or in acting. Wo to abhi ja ke hua hai.
1: Because he also was a model.
0: Yeah. He was very good looking.
1: Because of his, you know, that background, वो कपड़ों पे ज़्यादा इनका focus जाता था अर्जुन रामपाल के.
0: And I think even casual wear में he used to wear good clothes. So yeah,
1: but yeah, Ritik Roshan has to be one who's been flawless, even if it's fashion.
0: Definitely. So yes, तो मुझे लगता है एक छोटा सा tick, लेकिन उसपे एक छोटा सा cross, ऐसा वाला
1: comments देती ना teacher, 9 out of 10, but you can change this, fix this.
0: But मुझे लगता है ultimately क्या score देती हूँ मेरे fashion sense को?
1: Overall, a good 8 on 10.
0: Oh wow, thank you so much. मुझे लग रहा है मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई हूँ.
1: 100%. ओके, इफ यू हैड टू पिक अभी के करंट बॉलीवुड में से मेल एंड फीमेल बेस्ट ड्रेस्ड.
0: मेल एंड फीमेल बेस्ट ड्रेस्ड. ओके, मेल में मुझे लगता है आई रियली लाइक रणवीर सिंह. आई लाइक हिज फैशन.
1: ओके,
0: मुझे लगता है.
1: या, इट्स सब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स यू आर अलाउड टू.
0: आई रियली लाइक. ओके, एंड
1: ही स्टैंड्स आउट.
0: या, एंड फीमेल्स में मुझे लगता है कि
1: कैन टेल यू फैशन में दीपिका तो है ही, ऑफ कोर्स.
0: हाँ, दीपिका इज देयर, वो शी इज एस्टैब्लिश्ड ना.
1: बट आई थिंक अनन्या पांडे.
0: अनन्या पांडे इज गुड. या,
1: वेरी गुड.
0: हाँ, अगर वो अपना मुंह बंद रखे ना, तो वो दिखती और उसका जो पूरा फैशन सेंस एंड एवरीथिंग इज गुड.
1: इट्स वेरी रेयर दैट शी मेक्स अ पब्लिक अपीयरेंस किसी प्रीमियर में और एनीवेयर एंड शी इज नॉट लुकिंग गुड. आई फील लाइक दैट यू हैव टू गिव इट टू हर. एक्टिंग की
0: वो छोड़ दो. हाँ,
1: her appearances, her fashion, I think is really good. Spot on right
0: now. I would agree. Yeah, that's amazing.
1: आपसे question पूछता खुद ही answer.
0: All right. So I think हम अभी जो है show की समाप्ति पर आ गए हैं and it was amazing talking to you, Zohra. Thank you so much for supporting me यहाँ पर क्योंकि क्या आपका गला तैयार है कि जो veteran मेरे साथ बैठी हैं और मैं उनके साथ बैठी हूँ इस बार की winner and it was amazing to host the show with you and I hope all of you enjoyed as well. This is the Big Millennial Weekender on Big 106.2. मैं हूँ शिरन आपके साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए सुनते रहिए Big 106.2. I love Gray.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: क्या बात है क्या चीज है बेसा क्या बात है क्या चीज है बेसा क्या बात है

0: क्या बात है यार,
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: Non-stop music from the biggest movies. The Big Weekender. All about the hits. Big 106.2. The beat of Bollywood. What? What? What?

0: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: Less hustle, more yaadein. That's how weekends should be. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money मनी यूज करो।
1: क्या सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money मनी के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Good thing you upgraded your TV. Feels like the stadium.
4: Had to. World Cup's close. Got 1,000 dirhams off on TV and save 25% on soundbar. You can also save up to 200 dirhams with ADIB covered cards.
5: Football fans, bring the game home. Shop at Sheriff DG and win exciting gifts. T&C apply.
0: The songs that raised us. The stories that stayed with us. Your weekend throwback begins now. This is The Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Y2K vibes, filmy feels.